देखती पे गई देखती पे गई से जे भूले जाए मिस्टर एमन बंधु आर के अछे तुमार मत मिस्टर कखनो बादार।

टैक्सी पे गई वो, टैक्सी पे गई से जे भूले जाए मिस्टर। एमन बंधु आर के आछे तुमार मतो मिस्टर, कखनो बादार।